0: कवि।
1: हेलो हेलो,
0: कहाँ में देखते
1: हैं? होंदा ही बहुत बहुत है।
0: अभी मैं अलग ही न तो हम कहाँ देखे हैं ना? हेलो,
1: मैं छोटा मैं हेटेन वाकिंग कहाँ ने? कहाँ में तो आटा?
0: कहाँ में तो आटा?
1: खाला भी रहता? दवाई क्या वादा?
0: दवाई का खाला कोई वेला आवे तो कवि के लिए आए?
1: एक ने किया ने?
0: आत्र पास गिना वाद? अभी देना रहा?
1: आत्र पास तो मनोद खाने अभी? अभी सिंधु काबू?
0: अभी सिंधु खाने अभी सिंधु पैयत?
1: ओ पैयत तुनाक पूरा आटम उन्हें सिंधु कोची आगे नल तेने सिंधु कोची नगले अन्ना इतने नरनटा मैं पिसवाई पिसवाई तहाँ की ना
0: ओ मैं यार इस तरह तिब्बत सिंधु कोची ने मैं आलू ते काक
1: मैं
0: आपे किना जेंसी आपे
1: किना कोची हरी हेलो हेलो साथ
0: සමරණ කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ආදරණීය යන්න ඔයාට පුළුවන් මේ පැත්තට බර්ත්ඩේ විෂක එවන්න මේ WhatsApp එකට මෙන්න මේක තමයි නම් එක 0711 95 95 95 ඒ වගේම ආදරය කරන අයට song එකක් dedicate කරනවා නම් අපිට නම් ගම් කියන්න call කරන්නත් පුළුවන් නේද
1: ඔව් 0112 55 33 60
0: Yo, it's a girl, Nils.